0: मेरे माधव जी सतसंगत मिले सुतरिया
1: गुर प्रसाद परम पद पाया सुखे काष्ट हरिया रहा
0: जनन पता लोक सत बनता कोय न किस की तरिया
1: ठाकुर काहे मन भव करिया
0: उड़े उड़ अवै सै।

0: कथा संक्षेप ते सब हु कहत सुनाए।
1: वाच दोहरा ठाड़ पे मैं जोर कर बचन का सुन न्याय।
0: पांथ चलाए तब जगत में जब तुम करो सहाय।
1: राजे जे तुमरे ध्यान को नि तोड़ते आए हैं संत।
0: अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत।
1: दोहरा काल पुरख की देह मो कोट विष्णु महेश।
0: कोट इंद्र ब्रह्मा के ते रव संस्क्रोर जलेश।
1: दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत।
0: स्वर्ग वास रग भर करा सगरी परी समेत।
1: जो एक तसने अर्गावे
0: दुख पाप ते निकर न आवे।
1: विष्ण भगत की ये फल होई
0: आद ब्याद छुए सके न कोई।
1: सम्मत सत्रह सहस पचावन
0: हाड़ वदी प्रथम सुखदावन।
1: तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा
0: फूल पुरी ले लेहु सदारा।
1: दोहरा नेत्र तंग के चरण तर सद्रव तीर्थ रंग।
0: श्री भगवंत पूरण की ओर रघुवर कथा प्रसंग।
1: साध साध

नारायण नारायण नंदेश काए भूली गवारी दुखरत सुकृत थारो करमरी नारायण नंदेश।

रात दिन दिन कर कै कीती रात कसम विसार है ते कम जात नानक नावें बासनात राग गुजरी मोहल्ला चौथा।

ति से मुक्त पै जन हर त्याया जी तिन तुटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पहो सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी।

दलय तुम मम करहु सदा व्रत पारा तुम साहे मैं दाह तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब रा

ठाड पहो मैं जोर कार वचन कहा सिर न्याय पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करह सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नेते उठ त्या है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा

दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दिसदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। निमाणियां दे मान निताणियां दे ताम निओटियां दी उड़ने आसरियां दे आस

युगद बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु प्यारी साध संगत जी शाम दे सजे हुए दीवान विच आप संगतां नूं लड़ीवार कथा गुरमत विचारां सरवण करवा रहे सन। सत्कारयोग ज्ञानी कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले भाई साहब जी उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ हुण आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे हन। सत्कारयोग रागी भाई सरबजीत सिंह जी लाडी दरबार साहब वाले अते उन्हां रागी जथा बड़े प्यार नाल सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

खमाज है, बहुत प्यारा राग है, ठुमरी गाने वास्ते बड़ा मुफीद राग है। पर प्यारी बच्ची बेटी इश्मीत कौर ने इस छान बजाई तो बड़ा खूबसूरत वायलिन ये बजाते ने, पर छोटी उम्र च इतना अच्छा बजा रहे ने, अगों होर ये तरक्की करनगे, होर प्रोग्रेस करनगे, ते गुरु पंथ की होर सेवा करनगे।

किसी ने किसी कुल को सीखना हो गुफ्तगू गलबात गुरबाणी च बड़ी जगह आता है कि संत जन मिलन ते उन्हां दे कोलों कुछ पूछना चाहिए ते कुछ दसना चाहिए। संत मिला है किछ सुनी है कही है, पर नाल अगली गल ए भी कीती कि मिला है असंत। संत ना होवे उहदा अपोजिट होवे, भाव कि असंत होवे, मनमुख होवे, मूर्ख होवे, उत्थे फिर चुप कर देना चंगा होता है। उत्थे तुसीं जे गलबात कीती ते लाभ दी जगह तुहानूं फिर नुकसान जिहड़ा वह उठाना पएगा। उहनूं कहिंदे ने वाद विवाद, और वाद विवाद जिहड़ा इहदे चों रिजल्ट कुछ नहीं निकलदा, वैर विरोध ज़्यादा पैदा होंदा है। एक हुंदा वाद संवाद, एक हुंदा वाद विवाद, ये दोनों च फर्क है। वाद संवाद हुंदा है सोहनी गलबात, वादी संवादी राग दे विच भी दो सुर हुंदे ने, प्रमुख सुर हुंदे ने जिहड़े राग नूं गाउंदे ने। उन्हां नूं पता, जिस तरह राग यमन है, कल्याण है, कल्याण दे विच गा गंधार वादी है, धैवत संवादी है, बाकी इस राग दे विच ए दो सुर जिहड़े ने इन्हां दी आपो च गुफ्तगू है, वाद संवाद है, वाद विवाद नहीं है। विवादी हुंदा जिहड़ा सुर राग च ना लगदा है उसनूं विवादी कहिंदे, वर्जित कहिंदे। अगर वह राग विच टच हो जाए, लग जाए, तो कहिंदे राग जिहड़ा ये भंग हो गया। तो राग दा राग दा दूसरा नाम प्रेम है, प्यार है, मुहब्बत है, इश्क है। ते उहदे विच अगर दूसरा वादी संवादी तो बाद वादी विवादी सुर लगने शुरू हो जाने तो वह फिर राग नहीं रहिंदा। इस तरह गलबात दे विच अगर संत दे नाल गल होवे तो वह वाद संवाद होएगा, वाद विवाद नहीं होएगा। तो जिथे वाद विवाद होवे उत्थे गुरु कहिंदे ने मिलदा कुछ नहीं, उत्थे होमे दा पहरा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हर बंदा कहिंदा मैं एक दूसरे तो वध जाणदा, मैं कुछ जाणदा, आई एम समथिंग, तू कख भी नहीं, जो भी हाँ मैं ही हाँ। यह आदमी की सोच है। आपस को दीर्घ कर माने और को लगबात, दूसरे छोटा मोटा ही है, सारा ज्ञान जिहड़ा मैनू ही हो गया है। सतगुरु कहिंदे नहीं, कितों कुछ नहीं मिले। कई बार छोटे बच्चे दे कोल भी कोई ऐसा गुण हुंदा है जिहड़ा जीवन नूं सेध दे दिंदा है। सुकरात एक बारी ना बड़ा बड़ा सोक्रेट्स, उन्हों अंग्रेजी च बोलते हैं, सुकरात पंजाबी च बोलते हैं, यूनान का बड़ा बड़ा संत होया, बड़ी अच्छी पुस्तकों ने लिखिया ने। ते वो ना एक बारी कोशिश पिया करता सी समुद्र नूं खाली करन दी, भई इन्ना ज्ञान मैं हासिल कर लेना संसार दे विचों, सारा ज्ञान मैं ही पी लैना। ते उहदे कोल एक बर्तन सी, ते उहदे नाल ओ समुद्र च पानी भरे ते बाहर रोड़ देवे, पानी भरे ते बाहर रोड़ देवे, ते लागे के बच्चा तुरिया जाण दिया सी, छोटा 5-6 साल का, कहिंदा है संत जी ये की करदे पए, ये की करन दे। कहिंदे मैं समुद्र जिहड़ा ये खाली कर देना, भाव कि रब नूं प्राप्त करके मैं खुद ही इतना ज्ञानवान हो जाना है कि मैनू सारा ज्ञान हो जाए, सारी पृथ्वी का ज्ञान, सारी धरती का ज्ञान मेरे को हो गए, ये मेरी इच्छा है। बड़ा वड्डा फिलासफर होया, बाद में संत बन गया सी, क्योंकि बच्चे ने सिक्ख्या देती, उन्होंने छोटा 5-6 साल का बच्चा सी, वो कहन लगा संत जी ये समुद्र जिहड़ा ये खाली नहीं हो सकता, तुसी समुद्र विच डुब जाओ, समुद्र का हिस्सा हो जाओ तो वक्री गल है, इहदे नाल लवलीन हो जाओ, इस ज्ञान दे विच बह जाओ। कोई आदमी कहे कि समुद्र मैं चुके अपने घर सिर दे उत्ते घर लै जाऊंगा, इस तरह थोड़ी हुंदा है। समुद्र विच डुबिया जा सकता है, और चो एक चूली पानी की भरी जा सकती है, कोई बंदा बाल्टी भर लैंदा, अपना अपना पात्र है,
अपना अपना बर्तन है, अपना अपना ज्ञान है, जितना कोई हासिल कर ले। सुकरात को फिर एक भांडा होंदा सी पानी पीने वास्ते, वह भी सुट दिता सी, कहता इहदी वी लोड़ नहीं, हत्थां दे नाल ही पीआंगा। जे परमात्मा सब जगह मौजूद है तो उसनू फिर यह ज्ञान होया कि किसी नाल तर्क नहीं करनी, तर्क को तर्क दे विचों वाद विवाद दे विच पैन दे नाल जीवन जेड़ा है यह गर्क हुंदा है। इस करके भगत नामदेव जी कहिंदे ने वाद विवाद काहू सियो ना कीजै। इस तो पहला भी जिहड़ा असीं शब्द पढ़िया है उहदे विच भी बड़ी प्यारी पंक्ति आती है, कोई ना किसी ही संग काहे गर्वी, किसी नाल क्यों गर्व ना, क्यों हंकार करना। और खास तौर पर मूर्ख दे नाल तुसीं उलझोगे ना, पहला तो मूर्ख जिहड़ा है ना उहदे नाल तुसीं जित नहीं सकते। गुरबाणी च गुरु आसा दी वार च गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे ने मूर्खे नाल ना लुझी है, ना लुझी। उहदा रीजन यह है कि मूर्ख जिहड़ा है उहदे नाल अगर सियाणा बंदा बहसेगा, पहला मूर्ख जिहड़ा उहनूं अपने लैवल ते लैके आवे, क्योंकि एक सुप्रीम लैवल ते बंदा बैठा है ते मूर्ख थले बैठा है। मूर्ख जिहड़ा उहनूं अपने लैवल ते खिच के लै आवेगा, ते फिर उस जगह दा मूर्ख जिहड़ा उह एक्सपर्ट है, उहनूं जांच है, उह जगह ते उहदे नाल बहस कोई कर नहीं सकदा। इस करके गुरु कहिंदे ने मिले असंत मस्त कर रही है, मस्त भाव की चुप कर जाए उथे बोली ना, जे बोलेगा ते नुकसान जानी तेरा होना, मूर्ख नु कोई फायदा नहीं होना, उन्हें जित जाना बहस दे विच, हानि अपनी होनी। पर जे संत मिलन ते जूर उन्हां दे नाल वार्तालाप, जिंदगी दी सांझ, गुणा दी सांझ जरूर पाई। आओ भगत नामदेव जी फरमान कर रहे हैं कि वाद विवाद

पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कण कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी

है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना। आप जी के भाने विच दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया है। आई रहन आप दे भाने विच बतीत होवे, कृपा करो। आप जी अपनिया सेजा ते विराजमान होवो, संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जग ने दर्शन बख्श के निहाल करना। सही प्यारे मेल जिना मिलिया आमदा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

सिमरन सबके सुझाए, प्रभु गय सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु गय सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु गय सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम अमृत।

हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरनी चौंकुंठ जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर

गोविंद भजन मिन मृथे सब काम ज्यो कृपन गे डरार दाम तन तन तेजन जे कट बस्यो हर नाहु नानक ताके बल बल जाओ रह तबर कश अबर कमावत।

कथा अष्टपदी साधक संग मुखूजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रकट सुख ज्ञान साधक संग बुझे ब्रह्म नेरा साध संग सबोधन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक पर जतन साधकी महिमा बरने कौन बरानी नानक साधक शोभा ब्रह्मा है समानी साधक संग अगोचर मिलाय साधक संग सदा पर फुलाय साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग सबकी रेण साधक संग मनोहर बैन साधक संग ना कतुहता वै साध संग अस्तत मन पाव साधक संग माया तिन साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत साध संग कस्यो नहीं बैर साधक संग ना बिंगा पैर साधक संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा

हरी साध संगत भई हमारी साधु के संग मिटे सब रोग नानक साध बेटे संजोग साधु की महिमा भेद ना जाने जेता सुने तेता बखियाने साधु की महिमा ते गुण ते दूर साधु की महिमा रही प्रभुर साधु की शोभा का नाही अंत साधु की शोभा सदा बेअंत साधु की शोभा उचती उच्ची साधु की शोभा मुचते मुची।

ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाह नानक जो पाप का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे मैला लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मानो प्रगा जैसे तुर प्रयागाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा ब्रह्म ने सप्ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन पर व्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तमरस ब्रह्म ज्ञानी छीना ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म त्यार

अष्टपदे कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट भान भ्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट गप गाप विचारे कई कोट नवतन नाम ध्यावे नानक करते कांत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंत ज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभेगातम निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरे कई कोट पर दुख ना करे कई कोट माया सर्व माहे कई कोट प्रदेश ब्रमाहे जित जित लाभो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति योगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट

में आत्मरा सुख सह समावे अपने जन को सा समारे नानको परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही गोए नानक दस बलहारण जल थल मही अल सोए अष्टपदी करण कर

टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिसमन माहे तस्ते वृथा गोही नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप विनाशी प्रभ आपे आपन किया कशु न होए जिसो प्राणी रोचक होए तस्विन नाही तेरह किश काम गत नानक जप एक हर नाम रूबन तोय नाही मोहे प्रभु की जोत सगल घट सुहाय।

जयभाय कुशतनेक सतप्रख पूर्ण विवेक काहु बोला पाक्षत प्राणी अगम अगोचर ब्रह्म निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदायी ताकि कीमत कने न पाय आनक भगत बंदन कर है चरण कमल हृदय सिमरे सदबलहारी सदगुर बने नानक जिस प्रसाद है सा प्रभ जपने ए हर रस पावे जन गुए अमृत पीवे अमृत

मैं मूर्ख मना सुतमीत कुटम आर भनता कहा हो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार दे कहा हो कमन छुटकार अस्वस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ बा सारी जिंदी तुस बुझे ना बेगाना नाम मिसार नानक पछताना गुरकी मातू ले आने भगत बना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म गए गिल विख जाए आप जपो अबरा नाम जपावो सुनत कैत रैत कत पावो सार पुज सतन को नाम सह सुभाए नान गुन गाओ गुण गाव त्रि उदर समैर बिन जाय हमे बिग फैर हुए अजंत बसे सुगनाल सास ग्रासर नाम संभाल शाड सियानम सगली मना सास संग पावे सच धना हर मुंजी संज करो व्यवहार यहाँ सुख दर गया जायकार सर्व निरंतर एको दे गो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको साल आहे एक सिमर एको मन आहे एकस के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत

जो जो रचे सो तसे ध्यात, जिस भावत सिलय मिलाए, जिस भावत सिलय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंदर विश्वास कर मान्या, करनहार नानक के जान्या, जन लागा हरे के राय, तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक हो सेवा बनयाई, हुकम बूझ परम बतबाई, इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन दूर भय निर्भय, अंदर पूजे गुर के पैर, ए लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर पर व्यापे मेले।

मान आंतरिक उतरे चिंद आसन त्याग उतरंग संजना केतु मनमंग आप छोड़ बेनती करह सासंग अगन सागर तरो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद सासंग पाज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो।

नानक भवे न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच

गाव सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा।

छंद तवै प्रसाद चक्र चिहन हर बरन जात हर पात नहन जेह रूप रंग रेख पेको कह ना सकत कह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित ओज कही जय कोड इंद्र इंद्रान साहे साहान गनिजय तिर भवन महीप सुर नर असुर

अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगाज है, अपाज है, अचूज है, अचाज है, अमीक है, रफीक है, अतांद है, अबांध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है।

कामहि पजहं प्रयासंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सतर है न मित्र है न परमंग न पितर है न कर्म न काय जन्मंग अजाय न चित्र है न मित्र है परे है पवित्र है परथिसे अदिसे अदृसे अकृसे भगवती शांत व प्रसाद कहते के अछेज देसे के अपेज पेस है के अगंज कर्म है के अपंज परम है के अपेज लोक है के अदेत शोक है के अवतूत वर्ण के विपहूत कर्ण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है

शांत वै प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे भंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अंगाद स्वरूपे निर्वाण विभूते।

तो विभूत है, के अमितो पसा है, के आतम प्रभा है, के अचलंग नाग है, के अमितो अपांग है, माद पार शांत व प्रसाद, मन मन प्रणाम गुण गण दाम, वर बरे गंज हर नर पर पांच अन गण प्रणाम, मन मन सलाम, हर नर अखंड बर नर अमंड, अन पवनाश मन मन प्रकाश, गुण गण प्रणाम, जल थल दाम, अन सिंह अंग आसने अपांग, उपमा अपार गात मेति उदार, जल थल अमंड देश वे से अपंड, जल थल महंत देश वे बेअंत, अन भाव ना

है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, कालखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, धरणी तृत है,

चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार विचार हिसार की धार पछैया तोर देश मिलेंद मुवासन माते गजान के माल मिलैया गाड़े गढ़ान के तोल हार सुबात ही चक चार लवैया साहब श्री सब को श्री नायक जाज कनेक सो एक दवैया दानव देव फरेंद्र साचर भूत भविख।

सेवक सिख सब कृतारा मूरछा निज करत करिय सब बैरिन को आस करिय पूर्ण होए हमारी आसा तोहर भजन की रह पे आसा तुम्हें छाड़ कोई अमर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है।

थियो। जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमार। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछने उपजायो।

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किल सकल देह को हरता दुष्ट दुखण कौश करता।

पौड़ी से किती संतोखी जिनी सचो सत्य हाया ओने मंदी पैर न रखन कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित्य।

0: की इच्छा दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूटो बे
1: नानक बखाने बेनती तुझ पाच कूड़ो कूड़ महला पहला
2: सच ता पर जानिए जा रे ते सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए।

दिया इनी नेत्री जगत ने हालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोए था गुर लेके ने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए होरमत स्नोगली हो वजो पहे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंद्र पाए वजो गोवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिसका दिता खाओना तिस कहिए साबाज नाम कुछ ना चली।

आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार एक नागली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिछया आप कराए करे आप हों कैसे करी पुकार नान करना जिनकी या फिर तुसी करनी

जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन आदि साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र जुड़ जुड़ बैठी साध संग जी वडभागी हो आप जी ने अमृत वेले तो ही गुरु पातशाह दरबार दी हाजरी भरिया हन। अमृत वेले तो ही गुरु घर विखे जुड़ के संगति रूप जनाम जप के पवित्र गुरबाणी पढ़ सुन के कथा कीर्तन सरण करके गुरु घर विखे सेवावां करके सतगुरु जी दीआं खुशियां प्राप्त कर रहे। सो गुरु साहिब जी कृपा करन आप आई समूह संगत दी हाजिर दर प्रवान करन दरों करों गुरु सिख जी नाम दान बख्शन। आप सब नूं धन धन छेवें पातशाह छठम पीर बैठा गुरु भारी अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे गुरता गुरगद्दी दीआं अज लख लख वधाईआं होण जी। शाम दीवान संबंध विच ही सजणगे आप जी ने हाजरी भरनीआं। अगले हफ्ते मंगलवार वाले दिन 16 जून धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे शहीदी पुरब आ रहे हैं, इस संबंध दीवान सजणगे आप जी ने दीवान हाजिर करके इलाज प्राप्त कर रहे जी। इत्थे अमृत वेले दीवान की संपूर्णता है। आओ बच्चों के कैंप भी गुरमत कैंप लग रहे हैं रोजाना ही सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक। आप जी बच्चे साथ हाजिरी भर के बच्चों गुरमत राही जोड़ के इलाज प्राप्त करो। इत्थे अमृत वेलां दी संपूर्णता है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: जी का एकंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच
1: सोचै सोच न हो भई जे सोची लखबार
0: चुपै चुप न होवी जे लाए रहा लिवतार
1: भुखिया भुख

0: जसा दिवसा चनाए पाख्या पाव पार
1: आखे है मंग है दे दे दात करे दातार
0: फिर की अगे रखी है जित दिसे दरबार
1: महों के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार
0: अमृत वेला सच न वड़ियाई विचार
1: कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार
0: नानक एवे जानिए सब आपे सचार
1: थापे न जाए कीता न होए
0: आपे आप निरंजन सोए
1: जिनसे भी अतन पाया मान
0: नानक गाविये गुनी निदान
1: गाविये सुनिए मन रखिए पाओ
0: दुख पर हर सुख कर ले जाए
1: गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रह समाई
0: गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई
1: जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई
0: गुराय के दे बुझाई
1: सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई
0: कीर्तनावा जे तिस पावा विन पाने के नाई करी
1: जेती सिर्ठ उपाय देखा विन कर्मा के मिले लई
0: मातवेश रतन जो आहर मानक जे गुर की सिख सुनी
1: गुरा एक देहे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई
0: जे जुग चारे आर जा होर

0: परिकार
1: सुसा सलामत निरंकार
0: असंख जप असंख पाओ
1: असंख पूजा असंख तप ताओ
0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ
1: असंख जोग में रहा उदास
0: असंख भगत गुण ज्ञान विचार
1: असंख सती असंख दातार
0: असंख सूर महो पक्षार
1: असंख मोल ले विलाय।

0: गावे चेत कुपातल जाने लिख लिख तरम विचारे
1: गावे ईसर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे
0: गावे इंद्रन दासन बैठे देव त्यागर नाले
1: गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे
0: गावन जति सती सदोखी गावे वीर करारे
1: गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले
0: गावे मोनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले
1: गावन रतन उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले
0: गावे जोत महाबल सूरा गावे खानी चारे
1: गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे
0: सही तुनो गावे जोत उद्भावन रते तेरे भगत सराले।

0: रंगीन अंगी पाती कर कर जिनसी
1: माया जिन उपाय कर कर विख्या कीता अपना ज्योतिष दी वड़ियाई
0: ज्योतिष पावे सोय कर सी हुक्म ना करना जाई
1: सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई
0: मुंदा सुन सोख शरम पचोल दी ध्यान की करे बबूत
1: किंथा काल कुवारी काया जोगत डंडा प्रतीत
0: आई पंती सग जमाती वंजी तय जग जीत
1: आदेश तिस है आदेश
0: आद नील नाद नाथ जुग जुग एको वेश
1: भुगत गया।

0: मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
1: नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता।

0: और न पेश जाकर रूप रंग न रेख राग
1: दिशा
2: फैले और राग
0: नाम काम हीन पे खत ताम न जाहे
2: सर्वत्र नाम सदैव मानत
0: एक मूर्त अनेक दर्शन की

0: मन गन प्रणाम निरभय निरकाम
1: प्रचंड मेट खंड
0: आलस्य कर्म आदृश्य धर्म
1: सर्वा प्रणाड्य आनंद वाड्य
0: चाचरी छांद तो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे
1: हरियम करियम नामे अकामे
0: भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता
1: चतर चक्र जाने
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भक्ति
1: चतर चक्र पाल चतर चक्र काल
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य
0: चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर
1: न कर्म न काय अजन्म न जाय
0: न चित्र न मित्र परे है पवित्र
1: प्रतिशे दिशे दृश्य कृश्य
0: भगवंती छंद त्व प्रसाद कथते कि आछे जे देश

0: पे भोगत प्रवाह है
1: प्रजोगत अनूप है
0: चाचरी छंद अभंग है अनंग है अपेख है अलेख है
1: परम है कर्म है अनाद है जुगाद है
0: अजय है अपय है अपूत है अदूत

0: ओंकार है विश्वम पर है
1: जगदेश्वर है जगदेश्वर है
0: ब्रह्मण ब्रह्मंडस है कलखंडस है
1: परते पर करुणा कर है
0: अजपा जप है अथपा

0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तप प्रसाद सोइए सरावग सोध समूह सिदान के देख फिरे कर जोग जती के
1: सुर सरादन सोध सदात एक संत सुबह अनेक मति के
0: सारी देश को देख रहे हो मत क्यों ना पिक टिक देखियत प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाए कृपा हो
0: देख रति बिन एक रति के
1: माते मतंग जरे चर संग अनूप तांग सुरंग सवारे
2: कोठ तरंग करंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे
1: पारी पुजान के पूप बलि बल न्यावत शीश न जात बिचारे
0: ते पे तो कहां पे पूप पर अंत को नागे ही पाए पधारे
1: जीत रे सब देश सान को वंज टोल मृडंग नगारे
2: गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत की है राज हजारे
1: भूत विवेक भगवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
2: श्री पद श्री भगवान पर बिन अंत कौन।

श्री भगवान परे बन उपत एक रति बिन एक न लेखे सुद स्वाद रंत दबा सुसाज स्नाद जान दलेंगे भारी गवान परे मन मैं कर पर्वत पंख

0: थल मैं पल ही पल मैं सब थापत पेंगे
1: गुण प्रतापन बाद जैतन पापन के बे पूज पेंगे
0: साल समूह प्रसन्न रहे जग सत्र सब अब लोक छप।

0: सुनरिया
1: पूरन होई हमारी आशा
2: तोर पदम की रे प्यासा
1: तुम्हें शाह को यवनते आऊं
2: जो बर चाओ सुन तुम ते पाओ
1: सेवक सिख हमारे तारिये
2: चुन चुन सत्र मारे मारिये
1: हाफ हाथ दे मुझे उबरिये
2: मरण काल का त्रास न बरिये
1: पूजो सदा हमारी पछा
2: श्री अस्तु जो करियो रक्षा
1: राख रखन हारे
2: साहिब सांस साहिब प्यारे
1: दीन बन दुस्तन के हंता

0: हमारा
1: जहाँ का सब जगत बनायो
0: देव ने जिस जन उपजायो
1: हाथ अंत एक क्या अवतारा
0: सोई गुरु समझे हमारा
1: नमस्कार तसही को हमारी
0: सकल प्रजा जनाब सवारी
1: सबकन को सब गुण सुख दियो।

0: सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मानव सावे
1: नाम जिनके मानव से आवाजे शब्द कले
0: कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह सात नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
1: सब
0: सदा कुर्बान कीता गुरु विठो जिसकी आए वडियाया
1: कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो
0: चाचा नाम मेरा आधारो
1: वाजे पंच सबत कर सभागे कर
0: कार सभागे सब दवाजे कला जित कर तारिया
1: पंच दूत वास कीते काल कंटक मारिया
0: तर करम पाया तो जिन को से नाम हर कह लागे
1: कह नानक रह सुख हो तित कर अन दवाजे
0: साची लवे बिन देह नमानी
1: देह नमानी लवे बाचो क्या करे विचारिया
0: दबाज समर्थ कोई ना ही

0: 대하여 पवित्र माता पवित्र माता पिता कुटाम में सेहत से हो पवित्र संगत सुबाइया
1: कहते पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिन्नी मन में वसाया
0: कह नानक से पवित्र जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया
1: धर्मी सहसना उपजय वन सहसना जाए
0: न जाए सहसा कित संजम रहे कर्म कमाए मन तो वह शब्द लाग हो हर सियो रहो चितलाए
1: कह नाम गुरु प्रसादी सहज उपजे एव सहसा एव जाए
0: जियो मैले बाहर रहो निर्मल बाहर रहो

0: आगे तिनी जन्म जो है हरिया।
1: जियो हो निर्मल बाहर रहो निर्मल बाहर रहो ते निर्मल जियो हो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी।
0: गुर की सोए पुछे नाही मनसा रस माणी।
1: जन्म रतन जिनी खटिया भले से बन जारे।
0: ऐ नानक जिन मन निर्मल सदा रहो गुर नाले।
1: जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे होवे ता सन्मुख सिख को।

अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहारी आगे सुख पाछे सुख सहजा।

नानक आखण सबको आखे एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै, नानक जे को आपू जाण अगे ज्ञाना सो है। पातालां पाताल लख आगासा आगास, ओड़ कोड़ कपाल थके वेद कैनिक वात। सहसो ठारे कैनिक ते बासलू इक धात, लेखा ता लिखी है लिखे होए विनाश। नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। सलाही सलाही ती सुरत ना पाई आ, नदियां ते बाहा पवै समुंद ना जानिए। समुंद सा सुल्तान, ग्रह से ती माल धन, कीड़ी तुल ना होवानी जे तिस मनो ना विसरै। अंत ना सिफती कहना अंत, अंत ना करने देना अंत, अंत ना वेखण सुन ना अंत, अंत ना जापे क्या मन मंत। अंत ना जापे कीता कार, अंत ना जापे पारा वार, अंत कारण किते बिल लाए ताके अंत ना पाए जाए। एहो अंत ना जाने कोए, बहुता कही है बहुता होए। वड्डा साहिब उच्चा था उचे उपरी उच्चा नाउ, ए वड़ी उच्चा होवे कोए ते सूचे को जाने सोए। जे उड़े आप जाने आप, आप नानक नदरी करमी।

ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक तमरीच ना कोय राती रुती तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी ओ विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सुन पंच परवा नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेस केते ब्रह्मे घाट घड़ी है रूप रंग के वेस केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन सुमुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पा नरेंदा केतिया सुरती सिव केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कूड़े आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिदा की सोध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होरन कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिन मैं राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता मैं मा माहे ताके रूप न कथने जाहे नावे मरे न ठागे जाहे जिनका राम वसे मन माहे तिथे भगत वसे के लो करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर कर विखय नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भांड जे को कथे तांत नांत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार विखय विगसाय कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अरण मत वेद थियार भौ खलागन तपताओ भांडा भाओ अमृत तित ढाल घड़ी है शब्द सची टकसाल तिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक।

खुशी खुआर, जित सुताए तन पीड़ीऐ मन में चले विकार। रहाओ श्री राग महला पहला। कुंगू की काया रतना की ललता, गर्वास तन सा सड़ सड़ तीर्थ का मुख टिका, तित घट मत विगास। ओ

प्यार गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार त्रिविध कर्म कमाइए आस अंदेसा होए क्यों गुर बिना त्रुटि छूट सी सहज मिलै सुख होए निज घर मैल पछाणिए नदर करे मल धोए बिन गुर मैल ना उतरे बिन हर क्यों घर वास एको शब्द विचारिए अवरत आगे आस नानक देख दिखाइए हौ सद बलहारे जास श्री राग महला पहला त्रिग जीवन दुहागणी मुठी दूजे पाए कलर केरी कंध ज्यों एनस किर टह पाए बिन शब्दे

माया क्रोध कर्म मिले सच पाइए गुरुमुख सदा निरोध सती कारे सच मिले गुरुमुख पल्ले पाए सो नर जम्मे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दरगे पैदा जाए श्री राग महल पहला तन जल बल माटी पया मन माया मनूर बवगुण फिर लागू पै गुरु जावे तूर फिर सबदे भरमाइए दुबदा डुबे पूर मन रे सब त्रोचित लाए जिन गुरमुख नाम न बुझिया मर जन्मे आवे जाए राव तन सूचा सुवाखिए जिसमें साचा नाओ भय सच राती देहरी जेवा सच सुवाओ सची नजर निहालिए बौड़ न पावे ताओ साचे ते पवना पयाओ पवन है ते जल होए जल ते त्रै पवन साजिया घट घट जोत समोए।

पंच भूत सच भय रते जोत सची मन माहे। नानक औगुण विसरे गुर राखे पात ताहे श्री राग महला पहला। नानक बेड़ी सच की तरी

गुरमुख सच सो तार, गुर बिन क्यों तरिय सुख होए, ज्यों भावे त्यों राख तू, मैं अवरना दूजा कोई राव। आगै देखो डाओ जलै पाछे हरियो अंगूर, जे ते उपजे तिस ते बिनसै, घट घट सच भरपूर, आपे मेल मिलावे साचे महल हदूर। साए साए तुझ संभला कदे ना विसरियो, ज्यों ज्यों साहेब मन वसे गुरमुखी अमृत पियो।

मन बैरागी घर वसे सच बैराता होए ज्ञान महारस भोग वह बहुड़ भूख ना होए नानकेहो मन मार मिल भी फिर दुख ना होए श्री राग महला पहला यो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोभान शब्द न भीजे सागता दुरमते आवन जान साधु संग सतगुर जे मिलाए ता पाइय गुणी निधान मन रे होमे छुटे गुमान हर गुर सरवर से

मन रे गुरमुख यगन निवार, गुर का कहा मन वसै हौ मैं तृष्णा मार रहाउ। मन मोनक मन मानक निर्मूल है, राम नाम पत पाए मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिव लाए आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर जिन हर हर नाम न चेत्यो सो अवगण आवे जाए। जिस सतगुर पुरख न भेट्यो सो भव जल पचय पचाए, इहो मानक जियो निर्मोल है कौडी इहों कौडी बदले जाए। जिन्ना सतगुर रास मिले से पूरे पुरख सुजान, गुर मेल भवजल लंघी है दर गए पात प्रवान। नानक ते मुख उजले धुनि उपजय शब्द निशान, श्री राग महला पहला। वणज करो बन जा रहे हो वखर लियो सुमाल, तैसी वस्त वसाई है जैसी निबह नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त सुमाल।

कनो नेत्रोय खोटे पुत ना पवै जिन हर गुर दर्शना होए खोटे जात न पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कुमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाइए गुर का।

सरवर तू हंस कौल तू है कविया तू है आपे वेख विकास। श्री राग महला पहला कर तीजा यो तन धरती बीज कर्मा करो सल लिया पाव सारंग पानी मन किरसान हृदय जमाए लै क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भ समूढ़े माया पित सुत सगल काल त्रमाता तिरे हो है नांत सुखाया रहा विखे बेकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्मे हुए ते आई जब त संयम हुए जब राख कमल बिकस मद असर माई बीस अवतारो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सर सारे दस अठार मैं परम्परो चीन दस अठार मैं परम्परो चीन कह नानक एव एक तार है। श्री राग महला पहला कर तीजा अमल कर धरती बीज शब्दो कर सच की आब नित दे पानी होए किरसान ईमान जुमाए लै पिस्त दोचक मूड़े बजानी मत जान सो सह गली पाया माल कै माने रूप की सोबायत विधि जन्म गवाया रहा ऐब तन चीकड़ो ए मन मीड को कमल की सार नहीं मूल पाई भौर उस्ताद नित भाख्या बोले क्यों बुझे जान है बुझाई आखण सुनना पौन की बाणी अमन रत्ता माया खसम की नदर दिलै पसंदे जिनी कार एक ते आया

खरा सियाणा बहुता पार हानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर हौ क्या मोदेसा दुष्ट चोर नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार। श्री राग महला पहला घर चौथा।

कैसा होए आप पछाणै बुझै सोए गुर प्रसाद करे विचार सो ज्ञानी दरगह परवान। श्री राग महला पहला घर चौथा

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाइए, जे लोचे सब खोए राव। लख चौरासी फिर पया कामण दूजे पाए, बिन गुर नींद न आवे दुखी रहन विहाए, बिन सबदे पिर ना पाइए बिरथा जन्म गवाए। हौ हौ करती जग फिरी ना धन संपे नाल, अंधी नाम न चेतई साबादी जमकाल। सतगुरु मिलै धन पाया रना मर दे समाल, नाम रते से निर्मले गुर कै सहज सुपाए। मन तन राता रंग स्यों रसना रसन रसाए, नानक रंग न उतरे जो हार धोर छोड़िया लाए। श्री राग महला तीजा, गुरमुख कृपा करे भगत की जे, बिन गुर भगत ना होई आपै आम लाए बूझे, ता निर्मल होवे सोई हर जियो साचा साची बाणी शब्द मिलावा होई।

सच सुनाए, हमें मेरा रह गया सच्ची लया मिलाई, तिनकू मैल हदूर है जो सच रहे लिव लाए। नदरी नाम त्याई वनकर्मा पाया ना जाए, पूरे भाग सतसंगत लय सतगुर भेटे जिसे आए, अंदर नामे रत्या दुख विख्या विचों जाए, नानक शब्द मिलाव रड़ा नामे नाम समाए, श्री राग महला तीजा अपना भो

जम डरपी दुख पग दुख कणो दोहाग्नि क्यों तर रहे सुहाग। भाई रे अवर नाई मैं थाओ मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाओ रहाओ। गुरमुत पत सुबास तेज तेज कै संग मिलाओ तेज बिन कड़ी न जीवाओ बिन नावे मर जाओ। मैं अंदली नामन विसरै टिक टिकी कर जाओ गुरु जिना का अंदला चेले नाही ठाओ। बिन सतगुरु न पाईए बिन नावे क्या सवाओ आए गया पछतावना जो सुने कर काओ। बिन नावे दुख देरी जो कलर की पीत तब लग मैं न पाई है जब लग साथ सना चीत। सावधार पई कर पाई है निर्बाणी पद नीत हो गुर पुछ अपने गुर पुचकार कमाओ। सब सलाही मनो से उम्मे दुख जल जाओ सहजे हुई मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। सौदर ते से निर्मले तज काम क्रोध अंकार नाम सलाहन साध सदा हरा कूर तार। सुख मनु सारिय सब जिया का आधार सबद मरै सो मर रहे फिर मरे न दूजी वार। सबद ते पाई है हर नाम लगे प्यार बिन सबद जग भूला रै मर जमे वारो वार। सब सलाई आपको वड़े वड़े वाड़ेरी हुई गुर बिने अपना चीनिए कई सुने क्या हुई। नानक शब्द वसाणिए हमे करी न कोई। श्री राग महला पहला। बिन पिर धन सिंगारी है जो बिन बाद खुआर ना बाने सुख सेजड़ी बिन पिर बाद सिंगार। दो कणो दोहागणी न कर सीज पतार मन रे राम जपू सो कोई। बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिले रंग हुए रहाओ। गुर सेवा सुख पाई है हर वरसै सिंगार। सच माने पिर सेजड़ी गूढ़ा हित प्यार गुरमुख जान सजानी है गुर मेली कुण चार। सच मिले वर कामणी पिर मोई रिंग लाए मन तन साज विकसिया कीमत कह न जाए। हर वर कर सुहागनी निर्मल साचे नाए मन मैं मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार। एक तग रल मिलेगा मोतियन कार संत सभा सुख उपजै गुरमुख नाम आधार। खिण मैं उपजै खिण खपै खिण आवे खिण जाए सब पसाणे रव रे नौत कौल समताए। सह अतुल न तुलिय कथन न पाया जाय व्यापारी बन जर आए वजै। लिखाई कर कुमावे सच की लाह मिले र जाए। पूंजी साची गुरु मिले नाथ तिल ना तुमाय गुरमुख तोल तलाय से साज तराजी तोल। आसा मन सा मूणी गुर ठाकी सच बोल आप तलाय तुलसी पूरे पूरा तोल। कथने कह न सुटिए न पढ़ पुस्तक पार काया सोच न पाई है बिन हर भगत प्यार। नानक नाम न विसरै मेले गुर करतार। श्री राग महला पहला। सतगुर पूरा जे मिलै पाई है रतन विचार मन दीजै गुर अपने पाई है सर प्यार। मुक्त पदार्थ पाई है वगन मेटन हार पाई रे गुर बिन ज्ञान होए पूछो ब्रह्म नार दे भेद ब्यासे कोई रहाओ। ज्ञान त्याण तुन जानिए कत कहावे सोए सफलो बिरखरिया वला साब कनेरी होए। लाल जवे हर मान की गुर पंडार सोए गुर पंडार पाई है निर्मल नाम प्यार। साचो वकर संचिए पूरे कर्म आपार सुख दाता दुख मेटणु सतगुरु सुर संगार। पव जल बिखम डरावणो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना ते समंज मलार। सतगुर पै का पूछता नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विचरै दुख लागे सुख जाए। जे वाजल जालामणि नाम ना जपै रसाए कट बिनसी दुख अगलू जा पकड़ी पुस्ताए।

जल कमल ना राय। नानक गुरमुख हर रस मिलया जीवा हर गुण गाय। श्री राग महला पहला। डूंगर दे डरावण पे अड़े डरियास, उचो प्रभ गाखड़ो ना पौड़ी तितास। गुरमुखे अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पवजल बिख मंडराओ, पूरा सतगुर रस मिले गुरतारे हर नाव रहाओ। चला चला जी करी जाना चलन हार, जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार। पी सच्चा चलाना सच्चे थान प्यार, दर कर मैल सोने पक्के कूड़। हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख पार, तिसी का नाल न चलिया खब खब मोए असार। सोइना रूपा संचिए माल जाल जंजाल, सब जग मैं गोई फेरिए बिनावे सिरकाल। पिंड पड़े जो खेल सिपा फैली क्या हाल, पुता देख विकसिए नारी से पतार। चोआ चंदन लाई है कपड़ रूप सिंगार, खेऊ खेर लाई है सोट चले करबार। बैर मलूक हाई है राजा रहो कै कान, चौधरी रहो सदाई है जाल बलिए विमान। मन मुख नाम सारिया जो डब ददा कान, होमे कर कर जाय सी जो आया जग माए जग। सब जग का जल कोठड़ी तन मन दे सुआ, गुर राखे से निर्मले सब दिन वारी। भाई नानक तरिए सच नाम सिर सा पातशाह, मैं हर नाम न विसर हर नाम रतन वैसा। मन मुख पहुजड़ पाचमुए गुरमुख तरे अथा। श्री राग महला पहला कर दूजा, मुकाम कर कर बैसना नित चलने की थूक। मुकाम ता पर जानिए जा रहे निश्चल लोग, दुनिया के हस मुकामे कर सिद करनी खर्च बाद। लाग रहो हर नाम में रहाओ, जोगी तासन कर भय मुल्ला भय। मुकाम पंड बखाने पोथिया सिद भय देव सतान। सोर सिद गण गंधर भूमण जन से पीर सलार, दर कूच कूचा कर गए अवरे पे चलन हार। सुल्तान खान मलू कुमरे गए कर कर कूच, कड़ी मौत के चलना दिल समझ तो पै पहुँच। सब दैमाय वखाणी है बिरला तबूत, कोई दान वखाण बेनती जल तल मई रसोए। अल्लाह अलग आगम कादर करनहार करीम, सब दुनी आवण जावणी मुकाम एक रहीम। मुकाम ते सुनो आखिए जिस सिस न होवी लेख, सुमान तरती चल सी मुकाम ओही एक। दिन रब चले निस सच चले, तार कलख पलोई मुकाम ओही एक है। नानका सच बगोई महले पहले सतारा अष्टपदिया।

जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तौबेद निकी खटन। तुसी बड़े प्यार नाल अरदासां बेनतियां जोदड़ियां कर रहे हो कि किसी तरह वो अंदर बैठा सानू सुन लवे। दुख जे आपां समझिए तो जदों कोई तन दा दुख हुंदा ना असीं उह समझ बैठदे हां, ये दुख है विछोड़े दा। वाहगुरु दे नालों मन करके असीं विछड़े होए हां ते ये मानस जन्म मिलिया हुण मिलण लई, पर ये दुख महसूस नहीं करते। आप अगे भी बेनती की असी रूटीन च जीने, जदों तुसी गुरबाणी नूं ध्यान नाल पढ़ के विचारोगे ना, बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, ये बाणी महापुरख के निज घर वासा होए। तो जिन्ना चिर तुसी निज घर नहीं पहुँच जाते तुसी उन्ना चिर रुकना ही नहीं। जे किते गुरबाणी नूं आपां विचार के पढ़ीए, जे अज इहो शब्द विचार लिए जिहड़ा हुक्मनामा साहब आया, सतगुरु कहिंदे इह जिहड़ा शरीर आपां लई फिरदे हां ना इह तुहाडा नहीं गा, इस नूं तन कहिंदे ने, इहदे विच इक मन आ कहिंदे उह वी तुहाडा नहीं, ते इहदे नाल इक धन जोड़िया वाहगुरु ने, जिसका तन मन धन तीजे नंबर ते। जो धन की गल आउंदी आ ते असीं करंसी वल भजदे हां, जिहड़ी आ बाहर करंसी आ ना उन्हूं धन समझ लेंगे, उहदी गल नहीं कीती। आ जिहड़े साह लै रहे हो तुसीं, इह सवासां दे धन की गल कीती। इहदे सवास कौन दिंदा जी? जिसका तन मन धन सब तिसका। सवासां दा धन वाहिगुरू जी सानूं आप दे रहे ने, आपे करता कर कर वेखे देंदा सवास ग्रह है। जदों वो रोक लैंदा ना साह ते फिर किसे दी जरूरत नहीं गी उन्हूं, वो डुप्लीकेट ते ऑक्सीजन जी ला छड्डदे थोड़ा जिहा, पर फिर साह नहीं कुछ दे सकदा जदों रोक लैना।

सारे बोलो हम ग्रे जोदड़ी मिन्नत करो मिन्नत मिन्नत हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे अखां बंद करके मन जोड़ के ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे हिवांग ग्रे